0: तुम कुफा भी
1: नान गाना कौन रोने लो आ स्मार्ट ये फा मानो तो ओल ने ओल ये चिता क्लेवे ओल ना दिखे लगान ये सके मानो तो ओल जन नूल लाऊं सो आजाने सिलारा ना मैं लिया कुतन ना तो ओल तो ना लगे ला के न्यान ते ना न्यान यो मी आतं डे लाचा कतियो फा सके मानो का सुपुस तो ओल नूल तास नियत्यर जने ले फा चपाती ना गा मान तुकु ना तो फा चमी आर सास तेने तेरे तो अच्छी दिवो तेरे यान सास फोन वो सच्ची मतुन नूला निफ़ेला मंदुसा लेते चाइन जरूर मिसे ने वा को फुला फुला ने फिर आमुन्ना मिसे ना जान ते लासा मंदुसो आजीस
2: आये वो चाम म्याचा ले सास या सामान सो वाने बुर मेला लासान ते नदिया कतिया नदिया नो स्पोर केल सही वा Ibu leher sekarang fanatik, mana seni tarian sana? Emet mis fanatik, mana seni tarian tu? Cepat saya nak tahu orang leul lagu zampa, utan ni amna zan mana zan ni? Amna zan ni? Tarian sah seti amsone nul zan ni nul seti mata wajah, wajah ni entahlah na. Amde tu eh resaka sirkulasi orang rutu yang fokus zazo, diram kesan lu alu kita kaya nusa satri absembo disiplin cara tau nul.
3: Fakapiar nade fakwe same, mete amle fan zakan nade fakde fakapiar. Nade tinggi orang bolas tenisan save, bolas tenisan save, nade tinggi bolas cita kuni saz. Ilai nade fakpera nusa satri le malakas nade baby, sen hamaf maful. Ilai naga nanti api arna misa lesas tiap sekum bermalala mata wajan.
4: Ipa imbeja kawa nyantar lesas penala kel, pen mama falala, sungfit nak kel nali pena wain. Iya lu tu kunci atau, tapi itu atun lewula cazan bolat semua patas. Itu kunci api arna lisa tini na fusel lewulam bermalalan tu pun nanda kita ta saza.
0: Shoto tumpula, shoto tumpuaf.

0: क्लास तुमको फाफी
1: फ्रॉम से फाला हमको मनु का ना तुकन वे अथो मार पेम सारा सारा जान बे राम ते मिला तो बेचा का लेती हो ते पा मिसी सके तो कठान जान ले रान बची चाले ले फावो ना ते वे अंधुआ फाना रूफानी संबुला ना दिस अच्छा मारनी यो मचेरे अंको आ रावोट सो मिस पोतोरे री तो कुंबा पोतोरे जाम मजाका चेर मार मार मसापचा पना ते वोट सहया चान या चान मिस ते अब चालो लो सेवा सेनो फाउला ना ये ता कुंबा आरुस मानचिक
2: आ रनाम को मनुको ना सो निफाउला ना वे नेती मिफांडे काम सेदे वे नेती ने फामरोना ना फुट सफ्ता सा वे माकास्का ने राम जो चले सका बारास ने चीरो चोचो चान आय आ रा वो तो जोरा माकास्का ने चीरो जो दे सेटे ने ना सिमी से मिला अच्छा रा ना निपोटो ने ने उगला ना कुछ जान मातेत क्या चमायन क्या ने सावचा इलान ने ने पंजीबा जान ने इन्हों मुझे येर नारा चा ऐसे तम चिक ते यो अम सेजन मिला वे अच्छा रा ना यान कुछ जान
3: Cita aku tu zaman ni pada ni bapa zaman arnis kebal itu ecan arnis cito kini andurun duruala zaman ni. Mila seluruh nanti orang cira mamba ifaca ifaca naim desam bapa izin am saya cira tulis tas tiba iba yang zane. Iban fitin cira cimiana. Zaman fana cara ni kal tau apa sahing zane. Ba cara cara ni am panzif.
4: Multir ni nana api tipia tipia nama kau fula nara esna. Fana cahana tu tulen, na sofu londi nombat si, nombat si mana nani petan si kerutan nanti, lasar rizal ram, di mana raksani finansial naga mencira ba, finansial na PP kuku, ye, tena rian macam ni rian important, piam le reseka security watan muteri, no te mais nampi, nawe ye reseka tuos, sebetu cek cek nawe sekunulan nani. Am sewe citu cuma patungan ram, metode seka fasimban.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.